ताल में दो बहुत लगते चांग जी हो लगे हुर जिर जिर पोखता जिन दो नाशी जी वे गाद उमगुल शीर गातर ना अता यह बोल जी हुर ही बोसु थारंगे हम गले बर्दन